हम आकाशवाणी बुधवार से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सभी समईन को हमारा खुलूस भरा आदाब। समईन, आज शनिचरवार है। शक सम्वत 1948 के विसाख महीने की 26 तारीख बमुताबिक 16 मई 2026 ईस्वी। समईन, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के ठीक 7:56 हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज होता है।

हम आकाशवाणी बुधवार से बोल रहे हैं 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर, मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू खबरनामा रिले किया जाएगा। समय रिले का इंतज़ार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के

0: साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स

0: जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सिदेव फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं।

0: साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछे में हुई मीटिंग में चीन ने मशरक वस्ता में अमन इस्तेकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जाँचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान में जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के बदरा स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर। 8:45 हुए हैं। समयना पेश है प्रोग्राम सुबह खैर। पेशकश है राजा रहबर जमाल की।
3: आदाब सामीन, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह खैर। मैं हूं आपका मेजबान राजा रहबर जमाल और आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे खामोश मर्ज पर जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सेहत को दीमक की तरह खोखला करता है। जी हाँ, आज का मौजू है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और हमारा तर्ज जिंदगी। सामीन, तेज रफ्तार जिंदगी, जहनी दबाव, गैर मतवाजन गजा, नींद की कमी और जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी ने हाई ब्लड प्रेशर को हर उम्र के अफराद में आम कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोगों को इस बीमारी का एहसास उस वक्त होता है जब ये दिल, दिमाग या गुर्दों को मुतासिर करना शुरू कर देती है। इसीलिए इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा नमक का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, फास्ट फूड, मोटापा और मुसलसल जहनी तनाव हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजूहात हैं। अगर बरवक्त एहतियात ना की जाए तो ये बीमारी दिल के दौरे, फालिज और दीगर संगीन मसाइल का सबब बन सकती है। सामीन, सेहतमंद जिंदगी अपनाना ही इस मर्ज से बचाव का बेहतरीन रास्ता है। रोजाना वॉक करना, मतवाजन गजा लेना, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाना, नमक कम खाना और मुनासिब नींद लेना निहायत जरूरी है। इसके साथ साथ वक्तन फवक्तन ब्लड प्रेशर चेक करवाना भी बहुत अहम है। अब इसी मौजू पर मजीद जानने के लिए हम रुख करते हैं भदरवा की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वर्षा शर्मा की जानिब, जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर से बचाव और बेहतर तर्ज जिंदगी के हवाले से अहम बातें की। सबसे पहले आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में मैम, और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने के लिए। हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, तो जैसे कि आप जानते हो कि एक साइलेंट किलर के नाम से भी ये जानी जाती है, और ये जिस तरह से हमारे समाज में ये फैल रहा है, और कम से कम 55% लोग तो ऐसे हैं हमारे समाज में जिनको पता भी नहीं कि वो इस बीमारी के अंदर आ चुके हैं। तो और आप ये मान के चलिए कि ये इस तरह का मर्ज है, इस तरह की बीमारी है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। और काफी हद तक जो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस, जो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बाद में आपके लाइफ में होंगी, आप उनको भी दूर कर सकते हैं।
3: जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है और आम लोग इसकी इब्तदाई अलामत को कैसे पहचान सकते हैं?
4: देखिए, जैसे ब्लड प्रेशर यानी कि हम अगर नॉर्मल भाषा में बोलें, खून का दौरा जो हमारे आर्टरीज

0: क्या हो सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उसके काजेज हैं, उसका सबसे बड़ा है हमारा आज का लाइफस्टाइल। हमारा पहले लाइफस्टाइल होता था कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करते थे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, पैदल जाना है। आज हम ज्यादा, हमारा वर्किंग स्टाइल ही घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम है, या कहीं पे ऑफिस में हम जाएंगे, हम चेयर पे ज्यादा बैठे रहेंगे, यानी कि ज्यादा चलना फिरा हमारे में नहीं है। दूसरा, हमारा कहीं ना कहीं नमक का सॉल्ट इनटेक, यानी कि जो सोडियम है हमारी डाइट में, वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। हम कोई भी जंक फूड ले रहे हैं, हमारे बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं, उसमें इन चीजों का बढ़ोतरी पहले के मुकाबले ज्यादा है। घर का खाना कम खाया जा रहा है, बाहर में जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी डाइट है, एक बैलेंस डाइट ना होके, जिसमें कि हमारा प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना है, अगर हमारी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फैट्स कितना लेना है, वो डाइट प्रॉपर नहीं है। अल्कोहल इनटेक ज्यादा है, लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं, और सिगरेट स्मोकिंग जो कि एक रिस्क फैक्टर है इसके लिए, वो भी आपको देखने को जाएगा तो ज्यादा मिल रहा है। और इन सभी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है। जब बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो नॉर्मली 19-20 के पास होना चाहिए, और जब ये मोर देन 25 हो जा रहा है, तो एक रिस्क फैक्टर की तरह ये काम करता है। काफी चीजें हैं, जैसे ये हमारी वो चीजें हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स पे काम करें, तो कहीं ना कहीं हम इनको कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो आती है हमारी फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि आप देखिए कि कैसी एक BP की बीमारी है, जो फैमिली, एक फैमिली से दूसरे फैमिली, जनरेशन जनरेशन चल रही है, तो वहां पे थोड़ा सा इस पे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। या मोर देन 45 ईयर एज, या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस आ गया, क्रॉनिक रीनल डिजीज आ जाती है, या किसी को कोई सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है, यानी कि जिसको स्ट्रोक का हुआ है, तो वहां पे हमें इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहां पे मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल सामिन, इस वक्त जो है हम जो बात कर रहे हैं वो हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल पर कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर वर्षा शर्मा हैं जो BMO भद्रवा फराइज हैं, वो अंजाम दे रही हैं। और बहुत ही अहम मौजू है इस वक्त, हर एक जो है कि जिंदगी के साथ ये जुड़ा हुआ मौजू है। डॉक्टर साहबा, सामिन के लिए अगर आप चंद आसान एहतियाती तदाबीर बताना चाहें जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल, पहले तो मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, कि सबसे पहले आप कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है, BP ज्यादा है कि BP कम है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए। कोई भी हमारा एज ग्रुप है, हम देखते हैं 100+ एज, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसमें आपने अपनी एज को ऐड करना है, तो वो होगा आपका सिस्टोलिक, यानी कि किसी की अगर 20 इयर्स एज है, उसमें 100+ करेंगे तो 120 इज नॉर्मल। और डायस्टोलिक हम लेते हैं 80 या लेस देन 80, तो यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये शुड बी 120/80 और लेस देन 120/80। एक स्टेज हमारी आती है जब आपका ये BP 120 से चला जाता है 130 तक, और जो नीचे वाला है वो आपका 80-89 चला जाएगा। तो ये वो स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन स्टेज, यानी कि स्टेज 1। यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, यानी कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। और एक स्टेज हमारी आएगी जब वही BP 140/90 चला जाएगा, जिसको हम सीधा बोलते हैं दैट इज दी हाइपरटेंशन। और अगर आपका ये BP मोर देन 180, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है कि सिस्टोलिक 180 के ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक 110-120 जा रहा है, इसको हम हाइपरटेंशन क्राइसिस में गिनते हैं। और इसमें भी हम काफी कंडीशंस देखेंगे कि अगर किसी को BP 180 या 160 जा रहा है और नीचे वाला 100 के ऊपर है, अगर उसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, सर दर्द है, या चेस्ट पेन हो रहा है, या उसको सांस लेने में तकलीफ है, या कभी कभी उसको धुंधला नजर आ रहा है, तो ऐसी जैसी कंडीशंस में उनको फटाफट अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, क्योंकि ये वो कंडीशन है जो एक हाई अलर्ट काज करती है, और अगर वो उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेगा, जो कि सीवियर आगे जाके डिजीज को देंगी, जिसमें कि हार्ट फेलियर आ रहा है, जिसमें किडनी डैमेज आ रही है, या लॉस विजन या आई प्रॉब्लम।

0: भी हो सकती हैं। तो हमें मॉडिफाई करना है इन सभी चीजों को।
1: डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम होगा जो हाई ब्लड प्रेशर को मामूली मसला समझकर नजरअंदाज करते थे?
0: हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो डेली रूटीन वर्क है, उसमें हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते कि सर दर्द हो रहा है, आंखों से धुंधला नजर आ रहा है, या फिर हमारा बीपी थोड़ा सा ज्यादा भी चला जाए। तो आजकल जो धारणा मैं देख रही हूँ जनरल पब्लिक में कि नींबू पानी ले लिया, लेकिन कभी भी अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको आती है तो आपने अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, क्योंकि आपको यही जो प्रॉब्लम है जो आगे जाके डिफरेंट कंडीशंस को अराइज करती हैं, जो बाद में स्ट्रोक में, यानी कि एक तरीके से आपको पैरालिसिस में या ब्रेन हेमरेज में काज करेगी, आपको सीधा सीकेडी में, यानी कि क्रॉनिक रिनल डिजीज में कन्वर्ट कर देगी, या आपको डिफरेंट जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आती है। तो ये चीज जो है इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि प्रिवेंशंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना डाइट जो है उसमें सॉल्ट इनटेक का कम कीजिए, पोटेशियम आपके पास है यानी कि जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। और एक कंसेप्ट आया है डैश डाइट का। डैश मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। ये वो डैश डाइट है जिसमें मैक्सिमम फोकस दिया गया है सीड्स का, यानी कि जितनी भी सीड्स हमारे पास है, चाहे वो पंपकिन सीड्स है चाहे दूसरे वाले सीड्स है, उनका यूज ज्यादा करना है, जंक फूड को कम करना है, अपने लाइफस्टाइल को आप इंक्रीज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको प्लीज स्टॉप कीजिएगा, आपके पास आपके अगर बीपी आपको है तो उसको रेगुलर मॉनिटर कीजिए, मेडिकेशन यानी कि आपने दवाइयां लेनी, लेकिन दवाइयां हमेशा जो आपके नजदीकी डॉक्टर साहब हैं, ये जो आपके फिजिशियन है, आप उनको पूछे बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए। जब भी मेडिसिन है, हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं जो कि सबसे सेफ माना जाता है, जिसमें एमलोप्रस हम लेते हैं। दूसरे टाइप की मेडिसिन जो हम दे रहे हैं उसमें हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं जो कि टेलमिसार्टिन एक सॉल्ट होता है उसको दे रहे हैं। और हमारे पास जब भी इमरजेंसी या हॉस्पिटल में आती है जिसमें जी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, तो हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को डायूरेटिक्स देना, जिसमें लेसिक्स है, थायाजाइड्स है, क्लोरथायाजाइड है। तो ये जो मेडिसिन है ये हमेशा एक एक्सपर्ट फिजिशियन या प्रैक्टिशनर के अंडर ही ली जाती है और उनकी गाइडेंस के अंदर ही आपको लेनी है।
1: जैसा आपने बोला, कई दवाइयों के नाम आपने बताए, लेकिन क्या ये कोई भी ये दवाइयां ले सकता है कि हर एक बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वो लगती है जो एक डॉक्टर ही उसको बता सकता है?
0: बिल्कुल, ये जो मेडिसिन जितनी भी हमारे पास है, कभी भी कोई भी मेडिसिन जो है, जब तक कोई डॉक्टर आपको चेक नहीं करते हैं, जो हमारे फिजिशियन है या हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये उनसे पूछे बिना नहीं लेनी, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी है कि वो आपको साइड इफेक्ट काज कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टेलमिसार्टिन के बारे में बताया, जो कि एक सेफ ड्रग मानी जाती है, लेकिन वही साथ साथ में ये एक कंडीशन होती है हाइपरकैलीमिया, यानी कि ऑलरेडी आपके अंदर अगर पोटेशियम ज्यादा है और आप इसको और लेंगे तो ये और ज्यादा काज करेगी, जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके हार्ट कंडीशंस को, यानी कि अरिथमियाज को इंक्रीज कर देती है। तो मेडिसिन जो है, मेडिसिन जो सेफ हम माने जाते हैं कि भाई आपने लेनी है, लेकिन ये अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही लेनी है, मेडिकेशन आप बिना सुपरविजन में नहीं लेंगे। तो कभी भी आपको लग रहा है कि आपको बीपी रेस हुआ है, सबसे पहले आपने काम एंड कंपोज रहना है, आपने जो फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको रिलैक्स करके उसके बाद आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा।
1: यानी सेल्फ मेडिकेशन पर नहीं जाना है जब तक किसी एक्सपर्ट से हम जो है वो सलाह ना लें, उनको चेकअप ना करवाएं, तब तक कोई भी मेडिसिन जो है इस पर नहीं लेनी है, वो खतरनाक भी साबित हो सकती है।
0: बिल्कुल, इसमें मेडिसिन सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिजिशियन या डॉक्टर को भी नहीं बनना है हमेशा। अभी इसके लिए मैं आपको और एक शेयर करना चाहूंगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है। जितने भी हमारे सब सेंटर्स हैं, यानी कि जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो कि आज हर गांव में एक डिस्पेंसरी या सॉर्ट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पाई जाती है, वहां पे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस हैं या MLHPs हैं, उनका एक पोर्टल है, इसको हम एनसीडी स्क्रीनिंग या पोर्टल बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें उन्होंने क्या किया है, जितनी भी हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है जो कि मोर देन 30 ईयर्स है, जो कि 37% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये उनको एनरोल करती है, यानी कि उनका डिटेल लेती है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है।

0: है, और ये जितनी भी पॉपुलेशन है देखा जाता है, क्या इसमें से कोई ऐसा है जिसको बीपी थोड़ा सा रेस है या जिसको शुगर डायबिटीज की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। तो अगर किसी को भी बीपी रेस्ड होता है जिसको बकायदा चेक किया जाता है बीपी अपरेटस के साथ 2-3 बार, तो उस पेशेंट को रेफर किया जाता है टू द हायर अप्स। इसमें एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, दैट इज द टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन में क्या है कि 4-5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस हैं, वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं मेडिकल ऑफिसर के साथ। तो जब भी उनके पास ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस कोई भी ऐसा केस आता है जिसका बीपी ज्यादा है या जिसको डायबिटीज के लक्षण आते हैं या जिसको अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई भी सिम्टम आता है, तो उनके साथ कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद उस पेशेंट को हायर अप्स को रेफर किया जाता है। ये पूरा एक फॉलो प्रोसीजर चलता है, और वो पेशेंट जब वहां पे डायग्नोस होता है प्रॉपरली, वहां पे उसको मेडिसिन डाली जाती है, और मेडिसिन डालने के बाद फॉलो अप बैक किया जाता है। यानी कि वही मेडिकल MLHP या हमारा MO इंचार्ज है जो एक सेंटर पे बैठा होगा, वो उसको वापस फॉलो करेगा और ये देखेगा कि क्या वो अपनी प्रॉपर मेडिसिन लेके आया है और उसको प्रॉपरली ले रहा है, और उसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। और आज इसी वजह से जो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस चल पड़ा है वहां पे, तो हमारा जो इंसिडेंस है, जो हमारा डायबिटीज, ये डायबिटीज का है या मान के चलिए हाइपरटेंशन का है, कंपेरेटिवली 1-2% फॉल किया है पहले से। इसके अलावा जो भी हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जो पेरिफ्री में इस टाइम हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आता है, और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो बीपी है उसको हम, जब वो प्रेगनेंसी में होता है उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, इसको हमारे MLHPs होंगे, हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस होते हैं, ये 9th of every month को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान होता है जो कि उनके सेंटर्स पे है, वहां पे ये डायग्नोस्ड होते हैं, और वहीं से ये केसेस रेफर होते हैं हायर अप इंस्टीट्यूशंस को, और सेम इन्हीं को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो मेन मकसद रहता है जो हेल्थ का है, हम लोग क्लस्टर मीट्स करते हैं। क्लस्टर मीट इन द सेंस कि हमारे यहाँ जैसे आशाज हैं, आशा जो है मेरे पास जो यहाँ पे वर्किंग है, हर आशा फैसिलिटेटर के पास एटलीस्ट 12 या 13 आशाज होती हैं, और आशाज वहां पे आती हैं, आशा फैसिलिटेटर्स होती हैं, और हेल्थ इंस्टीट्यूशन इंचार्जेस, इनकी मीटिंग होती है 3 दिन 3 अलग अलग ग्रुप्स में, और वहां पे ये सारे केसेस डिस्कस किए जाते हैं। और मेन एम हेल्थ का ये रहता है कि कोई भी इंसिडेंस या कोई भी प्रोवेलेंस है, चाहे वो हाइपरटेंशन है चाहे वो डायबिटीज है, उसको वहां डिस्कस किया जाए और उसको देखा जाए कि किस तरीके से हम मैक्सिमम कम्युनिटी अप्रोच करके इन लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देके उस डिजीज का या उस प्रॉब्लम पर्टिकुलर डिजीज का बर्डन कम्युनिटी से कम कर सके।
1: बहुत ही अहम जानकारी जो है आज आपने सामीन को दी, और ये प्रोग्राम जो है सबके लिए सूदमंद साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। सामीन, डॉक्टर वर्षा शर्मा की गुफ्तगू से ये बात वाजे होती है कि हाई ब्लड प्रेशर से बचाव दवा से ज्यादा एहतियात और बेहतर तर्ज जिंदगी में पोशीदा है। सेहतमंद आदत अपनाइए, जहनी सुकून को अहमियत दीजिए, और अपनी सेहत का बाकायदा मुआयना करवाते रहिए, क्योंकि सेहतमंद इंसान ही एक खुशहाल माशरे की बुनियाद होता है। इसी पैगाम के साथ अपने मेजबान राजा रहबर जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज। सुबह बखैर।
2: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम सुबह बखैर, पेशकश थी राजा रहबर जमाल की। हम आकाशवाणी के बदरवा केंद्र से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। 9:05 होने वाले हैं। समीना पेश है रोजगार खबरनामा। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इतला के मुताबिक ख्वाहिशमंद मर्द व खवातीन उम्मीदवारों से ग्रुप ए और ग्रुप बी गजटेड असामियों के लिए दरखास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 45 है, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की असामियों के लिए जर्नल और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक एक असामी दरकार है। एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जर्नल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी, चाइनीज ट्रांसलेटर के लिए ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी, ट्रांसलेटर तिब्बतन सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ ग्रेड सेकंड के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 11 असामियां, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3 असामियां, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 8 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 4 असामियां, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3 असामियां और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी दरकार है। असिस्टेंट माइनीज इंजीनियर्स के लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए दो दो असामियां और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी दरकार है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ माइनीज के उम्मीदवारों के लिए एक एक असामी और अकाउंट ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख के लिए शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में इंजीनियरिंग फैकल्टी की असामियों के लिए उम्मीदवार के पास किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीई, बीटेक, एमई या एमटेक की डिग्री का होना लाजमी है, जबकि ट्रांसलेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 30 से 45 साल रखी गई है, जबकि रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी जाब्ते के मुताबिक उम्र की हद में छूट रखी गई है। उम्मीदवारों को दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरखास्त की फीस जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25 रुपये अदा करनी होगी, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और खवातीन उम्मीदवारों के लिए दरखास्त की फीस माफ रखी गई है। दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 मई 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.upsc.gov.in। समय वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं www.upsc.gov.in। समय ये था रोजगार खबरनामा। हम आकाशवाणी बुधवार से बोल रहे हैं 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर। 9:09 हुए हैं। समय न पेश है खुलासा। रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:20 पर आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी।

6 बजे हिंदी में खबरें और 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 6:10 पर आप समाप्त करेंगे रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों की जानकारी।

8:30 पर आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे सराजी मौसिकी, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

0: समय रात 9:30 पर आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे गाने पुराने। समय ये था खुलासा। अब से रात 10 तक रीले वर्णाश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों का हम आकाशवाणी के बदरवा केंद्र से आपसे मुखातिब है 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। समयीन आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पण गीत, जिसके लिखारी गायक और संगीतकार हैं कैलाश खैर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी भद्रवाह से बोल रहे हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। 9:20 होने वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। समय रिले का, चंद लम्हों का इंतजार कीजिए।

ए आकाशवाणी जम्मू है, बडलै खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं अभिलाषा शर्मा। कश्मीर च कपड़ा निर्यात गी बढ़ावा देने दे मकसद कन्नै जम्मू कश्मीर दे दस्तकारियें ते हत्थखड्डी मैह्कमे ने भारत सरकार दे कपड़ा मंत्रालय दे सहयोग कन्नै श्रीनगर च इक बड्डी कार्यशाला दा आयोजन कीता। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें आखेआ जे सरकार

0: जम्मू कश्मीर दे आर्थिक विकास गी रफ्तार देने दे मकसद कन्नै इक व्यापक रणनीति ते संस्थागत मंच विकसित करने गितै कल सरबंधत धड़ें कन्नै इक बैठक लाई। इस मौके पर मुक्ख सचिव होरें आक्खेया जे इस बैठक दा मुंडला मकसद इक ऐसा संगठित सरिस्ता तैयार करना ऐ जेड़ा सब्बने सरबंधत पक्खें गी इक सांझे मंच पर आनी सकै तां जे जम्मू कश्मीर दी अर्थव्यवस्था गी उबड़ा चुक्केया जाई सकै। उनें आक्खेया जे बक्ख बक्ख खेत्रें च पैहले शा गै केई पहलकदमियां कीतियां जा करदियां न ते इनें सब्बने गी किट्ठे जोड़ना मौजूदा समें दी मंग ऐ तां जे इंदे असर गी होर बधाया जाई सकै। जम्मू दे डिप्टी कमिशनर डॉ राकेश मिन्हास जेड़े जिले दे प्रधान मर्दमशुमारी अधिकारी भी हैन उनें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ मर्दमशुमारी 2027 तैहत 17 मई थमां डिजिटल तरीके राएं शुरू होआ'रदी आपो अपनी गिनतरी आली प्रक्रिया च रमानदारी कन्नै हिस्सा लैन। इक संवाददाता सम्मेलन च बोलदे होई डीसी होरें दस्सेआ जे जम्मू जिले लेई एह प्रक्रिया 31 मई तक्कर जारी रौह्ग ते आधिकारिक पोर्टल 17 मई यानि कल बडलै 6 बजे थमां लाइव होई जाग। एह्दे बाद 1 जून 2026 थमां 30 जून तक्कर सिखलाई हासल माहिरें आसेआ घरें मकानें दी गिनतरी आली प्रक्रिया शुरू होग। इस बारे होर जानकारी दिंदे होई डीसी जम्मू होरें गलाया,
1: मेरी सभी जम्मू वासियों से ये अपील है कि सेल्फ नुमेरेशन एक बहुत ही सरल और आसान, इसको आप अपनी किसी भी डिवाइस पे कर सकते हैं, चाहे फोन पे, चाहे टैबलेट पे, चाहे लैपटॉप पे। इसके लिए हम एक गाइडलाइंस शेयर करेंगे, उसमें जाके घर का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से जाकर उस पर लॉग इन करके बाद वहाँ पे 33 सवाल है। अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो आपको जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। आपने अपना सेंसस का पहला काम जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर दिया।
0: तुआई जिला प्रशासन कठुआ ने प्रधान मर्दमशुमारी अधिकारी डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा हुंदी अध्यक्षता च एक वर्चुअल मीटिंग दा आयोजन कीता जिदे च मर्दमशुमारी 2027 दे तहत 17 मई थमां लेइयै 31 मई 2026 तक्कर जारी रौहने आली आपूं अपनी गिनतरी आली प्रक्रिया लेई तैयारियें दा जायजा लैता गया। बैठक च सब्बने जिला ते सैक्टर प्रमुख, सरकारी डिग्री कालजें दे प्रिंसिपल, जिला प्रशासन ते पुलस विभाग दे सीनियर अधिकारी वर्चुअल तरीके राए शामल होए। गल्लबात दौरान जिले भरै च असरदार तरीके कन्नै जागरूकता पैदा करने ते आत्मगणना यानी आपू अपनी गिनतरी दर्ज करवाने आली प्रक्रिया गी व्यवस्थित तरीके कन्नै लागू करने पर ध्यान केन्द्रित कीता गया तां जे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यास च लोकें दी बद्धोबद्ध शमूलियत यकीनी बनाई जाई सकै। पुंछ दे डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा होरें कल इक उच्ची सतह दी बैठक लाइयै औंदे ईद दे त्यार लेई बंदोबस्तें दा जायजा लैता ते तैयारियें गी मुकदा रूप दित्ता। बैठक च जिले दे बड्डे मौलानाएं, जिला अधिकारियें ते बक्ख बक्ख मैहकमें दे प्रतिनिधियें बी शिरकत कीती तां जे इस त्यार गी पूरे व्यवस्थित ते रमानदारी आले ढंगे सिर मनाना यकीनी बनाया जाई सकै। इस मौके पर ईद दे मद्देनज़र साफ सफाई, पानी ते बिजली दी सप्लाई, ट्रैफिक प्रबंधन, सेहत सुविधाएं ते कानून व्यवस्था दी स्थिति बरकरार रखने जनेह मामले पर खास चर्चा कीती गई। इस बारे होर ब्यौरे सांझे करदे होई पुंछ दे डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा होरें आखेआ,
2: अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग रखी गई जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग जो हमारे यहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आके अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया जाए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को रिव्यू किया जाए और जो जो किसी भी फील्ड में कमी पेशी है उसको दूर किया जाए।
0: रामबन जिले च इनें दिनें भौर पालन दा कम्म बड़ा आमदन बख्श उद्यम बनी गेदा ऐ। जिले च तकरीबन 450 दे करीब बड्डे भौर पालक न जेड़े मधुमक्खियें दे 35,000 शा मते छत्तें दा प्रबंधन करा'रदे न। राईबाई मैह्कमे आसेआ भौर पालन दे पेशे कन्नै जुड़े दे लोकें गी रियायती दरें पर छत्ते ते लोड़चदी सिखलाई भी उपलब्ध करवाई जा करदी ऐ। इस पेशे कन्नै जुड़े दे इक मकामी करसान संजय सिंह दा इस बारे आखना है,
3: हमारे पास अभी कुल मिला के 1200 प्लस बी कॉलोनीज हैं और जो भी हानी का प्रोडक्शन रहता है हम अपने ब्रांड नेम ऑर्गेनिक भद्रवा के नाम से मार्केट में लेके आए हैं। तो हमारा अभी हनी प्रोसेसिंग जो भी रहता है अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही होता है, तो अगर कोई भी डायरेक्ट परचेज करते हैं तो हम उन्हें होलसेल और रिटेल प्राइसेस दोनों प्रोवाइड करवाते हैं।
4: अखीर च खास खास खबरें परी पड़ती है। कश्मीर च कपड़ा निर्यात गी बढ़ावा देने दे मकसद कन्नै जम्मू कश्मीर दे दस्तकारियें ते अत्थखड्डी मैह्कमे ने भारत सरकार दे कपड़ा मंत्रालय दे सहयोग कन्नै श्रीनगर च इक बड्डी कार्यशाला दा आयोजन कीता। शिक्षा मंत्री सकी नायतू होरें आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर दे दूर दरेडे इलाकें च म्यारी शिक्षा दी पुज्ज बधाने आस्तै वचनबद्ध ऐ। खेड मंत्री सतीश शर्मा होरें श्रीनगर दे मैपल आईवी फ्ली मार्केट च स्वदेशी उत्पादें गी बढ़ावा देने पर जोर पाया ते मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें जम्मू कश्मीर दे प्रमुख आर्थिक खेत्तरें दे विकास लेई हितधारकें कन्नै सलाह मशवरे आस्तै इक बैठक दी प्रधानता कीती। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।
5: MHz की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का भद्रवाह स्टेशन।

समय 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कश्मीरी मौसीकी। प्रोग्राम के आगाज़ में पेशे खिदमत है रहमत कश्तवाड़ी का कलाम एजाज़ अहमद की आवाज़ में।

एजाज अहमद के गाए गीत के बाद समईन अब पेश हैं रसूल मीर का तहरीर किया गीत अल्लाह रखा की आवाज़ में।

अभी आपने अजहर नजार की आवाज़ में कश्मीरी लोकगीत सुना। समईन, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश की ओर, जिसे पेश कर रहे हैं माजिद बशीर।

रसा जावदानी के कलाम के बाद सामईन आखिर पर आपको महसूस करवाते हैं महमूद गामी के लिखे मंजूर अहमद के गाए इस कश्मीरी गीत से।

इसी गीत के साथ समय आज के प्रोग्राम का वक्त पहुंचता है अपने इख्तिताम को। हम आकाशवाणी बदरवा से बोल रहे हैं 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। समय 10 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम शाम 5 बजे तक रिले किए जाएंगे। समय रिले का चंद लम्हों का इंतज़ार कीजिए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके।

0: थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे, आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी।
1: और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का?
0: अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी।
1: अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं।
0: सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है, और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आईं? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थीं आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम।

आज प्राचार्या भी प्रसन्न थीं। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, यह वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था।
इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रैवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर,
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
0: रंग तरंग
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना, और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलित दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू

सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की आवाज़ शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, 10 नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा

रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई, प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों के महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो वे बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाएगा ना, तो वाह वाह। और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है, तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सक कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही।
अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है?

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थीं और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार

जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी, तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है, जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती कलियां महकती फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने, महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है, इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया, उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था,

0: साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था। ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था। बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे। आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रही हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है, अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से

0: जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ।

0: कब आता है, जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें कब आता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंचबत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगति और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी रही।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुँचने के लिए बहुत

सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: Yeah.
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। साथ ही गरबा नृत्य संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार

0: के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा

0: कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदा

बहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज़।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो।

चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखी हुई लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोकझोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के इस सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहेगी।
2: मन चाहे गीत,
3: मन चाहे गीत, यह है विविध भारती।
4: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला, रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर

0: धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
1: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
0: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
2: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
1: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
0: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
2: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
0: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
1: और मैं हूँ शारद्वत।
2: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
0: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
1: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
2: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
0: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
2: फिर?
1: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहां शकुंतला उपस्थित है।
2: शकुंतला?
1: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
2: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
1: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
2: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
1: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
2: यहां तो
0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वह लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
3: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
4: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
5: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
3: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
5: लताएं भी रूठती हैं क्या?
3: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
4: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
3: क्या समझी है तू?
4: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
3: वो कैसे?
4: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
3: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कसकर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
4: मुझे क्यों दोष दे रही है?

0: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
1: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
2: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है री।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं
1: तेरी तरह।
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: अरे
0: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
2: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजिए ना।
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
3: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
3: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
3: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य,

0: पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
1: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
3: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
3: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
3: ये लीजिए
0: अंगूठी, किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
3: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
3: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
3: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
0: चलो चलो चलो, उस हाथी की यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
3: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो शकुंतला।
1: चलो
3: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राज कार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझाकर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है,
7: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवता, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी?

0: कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
1: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
0: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से।
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
1: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
1: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत?

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आंब, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार, मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
2: मंच पर आपने मंच पर दी हैं।
3: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका उसका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
2: जी,
3: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
2: जी, जी, जी।
3: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ, हाँ।
3: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
2: हाँ।
3: तो आपके गले में नहीं आई।
2: हाँ।
3: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
2: हाँ।
3: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं,
2: हाँ।
3: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब श्री
3: रामचंद्र
2: जी।
3: तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है,
2: हाँ।
3: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो
2: जी।
3: पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एनवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय काली पास सुर है तो,
2: हाँ।
3: खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ।
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
2: हाँ।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी जी,
3: दोनों में फर्क था, संजीव और अन्ना जी।
2: अन्ना जी

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, या नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बायानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा, तो मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो वो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा,
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे,
0: हाँ,
1: और वो लावणी सुलोचना चौहान जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चौहान जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी, जी, जी।
1: कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया करें,
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: था,
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा
1: है, ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात, क्या
1: लेकिन
0: बात?
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
0: हाँ,
1: अनुभव से
0: हाँ,
1: आपको मालूम होना चाहिए
0: हाँ,
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
0: जी, जी,
1: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सांप के सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा,
1: फिर दो गाने के बाद एक कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो
0: अच्छा,
1: सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा,
1: और जहां तक पहली बार भी गए
0: हाँ,
1: किसी शहर में किसी
0: हाँ,
1: गांव में छोटे से गांव में भी,
0: जी,
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता,
1: पहला प्रमिला
0: जी,
1: भी
0: जी,
1: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक डुगाना है,
0: हाँ हाँ,
1: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
0: हाँ,
1: और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: गया फिर जानी विस्की और परसों भी रहेगा और तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: ना, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है
1: बहुत फर्क है,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
0: जी
1: थी।
0: जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी जी
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मेरा शो देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छी है,
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल, शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
1: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी जी
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कांटेक्ट
0: जी
1: किया।
0: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपना स्टाइल
1: जी
0: होता है।
1: एकदम
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
1: समझ,
0: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं, हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ
0: बेगम
1: जी
0: जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी हाँ
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूं
0: किन
1: कहूंगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी
0: अच्छा
1: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
0: हाँ समझ में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे
0: जी
1: जरा
0: जी
1: भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधे का नाचेरे गाना,
0: जी जी
1: तो वो

0: गाना वो पेश करता था, बहुत अच्छा, और सुख में सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास,
1: जी।
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास, शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो, आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
1: तो श्रोताओं में समझ में आ जाता है।
0: बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उनके दिमाग में वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: मिलता नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
0: बजा करके
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज, चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन काल के हिसाब से तुमसे तो बदली हो जाएगा
1: जी,
0: ना जी, तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: बात,
0: तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी,
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी,
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके
1: जी जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी।
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था, फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: बहुत अच्छे,
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो में वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं आई। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, एवडे प्रवास कराएगा पर गायला उभ रहा कस करता, मैं नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी,
1: हैं,
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: विमला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ाला
0: लावणी है,
1: पिकला
0: पाड़ाला पिकला
1: अंबा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या
1: हाँ
0: उसका शो में
1: वो
0: शामिल
1: होती,
0: होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत
0: था।
1: ही जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर।
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला भगुन तुम्हें।

哦，宝呢宝呢宝呢在那躺吧，哦，宝呢在那躺吧，巴达拉皮克莱阿姆巴。

0: அருகே படால பிக்கலை அம்பா, அலவை படால பிக்கலை அம், ஒனிட்டு வக படால பிக்கலை அம்பா. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी, पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी, जी,
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी, अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर, अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उनको भी शायद तारा.
1: जी प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: थी. हाँ,
1: और अपने लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुना सुनाती हूँ.
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं
1: कोशिश
0: कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा नसीब।
1: गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ।

0: ये गाना बहुत दरे ज्यादा। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो

0: रेस्टलेस होते थे,
1: हाँ
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में,
1: जी
0: वहां जब सब लोग काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ हाँ
0: शॉर्ट,
1: हाँ
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था,
1: ओहो
0: तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर,
1: ओ
0: इतना कॉन्शियस हो गया, और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे
1: जी जी
0: उसमें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी बिल्कुल
0: बोलना।
1: बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे
1: हाँ
0: इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो
1: हाँ
0: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी, उनके
1: अच्छा
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ जी
1: करके।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

ये आकाशवाणी बदरवाह है FM 101 MHz पर। समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब समाप्त कीजिए बदरवाही मौसिकी। आगाज में आइए सुनते हैं मूल राज मिश्र की आवाज़ में लोकगीत।

अभी आप समाप्त कर रहे थे भद्रवाही मौसिकी। ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। अब पेश है किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किसान वाणी।

0: सुषमा जी जयंत किसानवाणी प्रोग्राम सुनने वाले से भी लाभ हैं, बुजुर्गन जी भी जयंत जी।
1: जय हिंद अजीत जी। ते उम्मीद करता हूँ कि शे किसान ला ठीक ठाक बोले ते हरा अपने कम में मा मसरूफ बोले ते हरा अजीत जी। आजकल मौसम भी ज्यादा है, छेल बेरार होए, थोड़ी थोड़ी गर्मी एजी जा रही है ना, बारिश में भी तो फिर या सन ठंड बेगा चिबलाए माँ, लेकिन इन्हें की मौसम थोड़ो छेल बेजो रोए। अस अपने किसान लान है तम अपने शार शुकाड़े माँ जजलोज बिजी हैं नेरा।
0: जी,
1: आजकल अपना कम काज अकेले रह रहे हैं, आजकल इसे किसान ला जाना कुकड़ी बेने में बड़े ज़्यादा मसरूफ हैं, है ना। तो यहाँ से यार बस बार बार भी सोचता हूँ कि कोशिश करनी हो नज़र की यार होनी शकम्मा जाना शुर बेजोर जोर शोर सी। तो अस एनजी गल याद रखम कि पिछली बार अगर असं कर कोई भूल चुक बोर थी
0: जी
1: तो इस बार असी तो कोशिश करनी कि भूल इस बार अस ना करम। तो खास कर कुकड़ी की गल करम तो अस ज़्यादा टोको लगते कुकड़न ते असी भेले जन बीज तन तो सुर सी ट्रीटमेंट करना है जनी किसान डाई ले रही। तो उम्मीद करता हूँ कि तनी सी ट्रीटमेंट जरूर क्योर बोलो या फिर तन बेर बीज आन तन जन गिनता तन क्योर भी होते सी
0: जी,
1: ट्रीटमेंट है
0: बिल्कुल
1: तन दवाई मिले भी बचे। लेकिन जन देशी कुकड़ी अस अपन बीज रखता हूँ तो तन असी कोशिश करनी कि तन अस सी ट्रीटमेंट करूँ जिस अगर असी कुकड़ी बेनी तर लव जी अस दवाई मिले तो रखम बीजे में तो जिस अस्तन फिर बेम अपने उड़ारन। तो असी कौन बोलते कि यार अगर हम कीड़ो लगने और कम खतरो रहते कीड़ो कम लगते ते असन कोई परेशानी नहीं जे। ते होरे भी यार शे किसान ला आजकल कोने की जनी अगर गेहूं जो वगैरह लोन तो तन कर जो पिकी जो रिन किटी रहा रिन घास लो रू तेना भी किटी रहा रिन। ते अगरों वगैरह उन्हीं धानेर थला भी दे सैड रही से किसान लाई ते जिन वाले कमे में टाइम में मतलब कम जाना तना बेदीगा निशा। तो असं निकी निकी गल करो खास ध्यान रखना हो नजर है कि अस असन कोई अगर हो जाए तो असं परेशानी नहीं जे जन अस नवा बीज लाम तो तना सी ट्रीटमेंट वो तन करो छेल टाइम में पूरा सलाम है
0: जी
1: ना।
0: जी बिल्कुल
1: ते टाइम भी कोई चीज़ बचे यार टाइम में पूरा जन अस अपनी फसल बेतम तो टाइम में पूरा बचे पक चे तो असन तसोरो फायदा होते है ना। ते निकी निकी गल करो नजर अस ध्यान रख मिलता अगर हो जाए इसी फसल बचे तो अस छेल पैदावार तो अपनी जमीन बार सातम।
0: जी बिल्कुल जी, सुषमा जी ठीक सुन तुसें कि जो कि यार हूँ नज़र असें ध्यान रखनू है
1: जी
0: कि अब तुसें गल की कि बीज इन्हें ट्रीटेड लानू है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर अस उनका अपनू बीज है तो सो सीड ट्रीटमेंट बड़ो जरूरी है।
1: जी
0: अस्कर पहले भी अस जोनते रहा तुम अपने प्रोग्राम की मित्री जांच जरूरी।
1: जी
0: ठीक है, सीड ट्रीटमेंट
1: जी
0: यानी बीजरी जांच,
1: जी
0: ठीक है, तो सिरे बाद मित्री जांच, फिर
1: बिल्कुल
0: मित्री जांच पहले एक रुपये सनी असी बीज लाने कर पहले
1: जी
0: यानी अगर असन उनका दूई फसला बेचे ना
1: जी
0: सीजने में तो असी दूई बार मित्री जांच करूरी लोड़ से।
1: जी
0: ठीक है, तो सिरे बाद गोबरेली खाद बड़ी
1: जी
0: जरूरी है और खास कर तो इसे किसान जन सब्जी को कारोबार कर रहा और तैन तो जोनू चाहता कि भरपूर जितनी भी तनका मतलब कि देशी खाद बोए गोबरे की खाद बोए तितनी घाटे
1: जी
0: सब्जन में तो असें केमिकल बिल्कुल ही नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल जी
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है, बाकी जर जर असन लगते कि फसल बाड़ी इसी छेलने लुरी बनने तो आज साइंस काफ़ी तरक्की की हुई है।
1: जी
0: अस नवी नवी टेक्निकी सी जे अपनी खेती बाड़ी करी सकता हूँ।
1: जी
0: आज असन का बड़ी सुविधा ना, पहले सहते थे कि भाई इसे कुछ जना लोग थे जने इसे किसान थे तनका दांत बहुत थे हल जोतते थे और अपनी जमींदारी करते थे
1: जी
0: बीजा पुराना बहुत थिया। ठीक है,
1: जी जी
0: टाई टाई चोर चोर पाँच पाँच साल अके बीज चलते थे लेकिन आज कुने क्या अगर असन का अक बीज छेल न माने तो दियो साल डिपार्टमेंट अगर गए तो अस नौ बीज आना चाहे कुकड़ी न
1: जी
0: चाहे राजमा करी गल करम। आज राजमा भी तो सहर थे शठू
1: शर्तू
0: जान कि
1: जी
0: जल्दी तैयार भी गाते है
1: बिल्कुल
0: ना, ते तस्मा भी कही किस पाई जी जूरी नूनी मार्टी मज या डिपार्टमेंटे का कि जन मास छे लो अपनो मुनाफो करी सकते हो। ऐसे हर एक बीज असन का हाइब्रिड है
1: जी
0: लेकिन कुने की टेक्निक तरीकों से है ना तस्मा बदलाव करना जरूरी है जिससे अस कई ठहर रहता हूँ कि भाई इसे बदलाए मैं खास करता मौसम से बदलाव तो रहते हैं
1: जी जी
0: यार हिंतड़ो इजते ठंड बेगा चे थोड़ी देर बाद ठंड बेगा नहीं है थोड़ी
1: जी
0: देर गर्मी रहा चे फिर बारिशान
1: जी
0: ऐसे कुम बोते कि इसी से फसल बाड़ी है तस्मा काफ़ी गिरावटे है ना।
1: जी
0: अगर ठीक रहो मौसम फसल रहे अनुकूल रहो तो फसल इसी छेल बननी लेकिन तेतरो बेनिफिट असन फिर भी ना बने कि जितरो अस सब्जी लाने में कर मिले
1: जी जी
0: लिहाजा जोरों मतलब है कि अस सब्जी तो ला तुम, लेकिन किना बोए कि अगर असन का जमीन है या थोड़ी सी भी जमीन असन का है किस मरलन में जमीन है तो अस पाली हो उस भी दसनी साथी ले सकता
1: बिल्कुल
0: हूँ।
1: जी
0: आख तो पनीरी अस अपने जल्दी कर जल्द तैयार करता हूँ, जस
1: जी
0: पनीरी पर भी 100 रुपये से कमे सकता हूँ और साथ साथ ही कुने की भाई अस पाली हो से मैं अपनी सब्जी जल्द कर जल्द तैयार कर सकता हूँ।
1: जी
0: आज हर एक चीज़ है ना तो इसमें बदलाव होजीगा तो जल्दी आखता पाली हाउस आज होरो निसरो है हाई टेक पाली हाउस।
1: जी
0: ठीक है हाई टेक पाली हाउस में कौन है कि भैया है थोड़ा सा बटलो भी होना है और साथ साथ ही कौन है कि असेरे जसरे असेरा ना भाई गेट बोतना संगस शटर
1: जी
0: खोलने ले तो तसरे असेसरो शटर उभरी होंगी केरी सकता हूँ।
1: जी
0: तो इसमें भी ऐसे छेल फायदोज है अपनों सब्जी जना भरपूर मात्रा में ले सकते खास करता टमाटर के लिए अस गल करूँ जाना कि बेर लाने से इसे शुकारन में जल्दी ख़राब होगा तो है ना
1: जी
0: तो जिस चीज़ों को ध्यान रखूँ तो बाकी सब्जी तो अस इसे बुलाए महाराज सब्जी कामयाब है टमाटर
1: जी
0: बेजे भाठे बेजे शिमला बेजे
1: जी
0: ठीक है कैकड़ी इसे किसान ला लातन काफ़ी ठहर
1: बिल्कुल
0: नहर तो उस पर देशी काकड़ी मार्केट में पूजी जो रही थी छेल फायदे इसे किसान मेरी नाम
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी अक तुसी यहाँ छेल गल जो ही पाली है उसे वाली हैरा अस आजकल कुन ऐतम की पहले अस सीजनी सब्जी खाती थी है ना या फिर दूरा कौन चीज़ मेरा समझी सब्जी ऐती थी ते आजकल उन्हीं शे किसान ला रहा भी पाली हाउस ले रहा रिन ते तना मतलब जना बेमौसमी सब्जी दस जैस दो तम कि तना उन्हें जरा गर्मी का मौसम में जरा तो कोई यहीं तरह सब्जी भी होती तना ना थी अस भी नहीं सकते लेकिन आज पाली हाउस की वजह से हर सब्जी जाए था इसे किसान ला जाए था उगई रहा रहे थे 12 महीने अस जाए था सब्जी हर कोई सब्जी जैसे टमाटर थोनी इसे एक ही बार बनता थू साले में गर्मन माता होनी आजकल कोने की ही तड़े भी बनते इतने किसान ला रहा मशरूम भी उगई रहा रहे था ना पहले बे रही थी आजकल इड़ी उगई रहा रहे ते पॉली हाउस जाए तो किसान के लिए भी छे लेते बने यार बेनिफिट है कि जी कि असन ताज़ी सब्जी इट्ठा मिलेगा चे
0: जी बिल्कुल
1: ते दुयों गल है कि यार साल भर अस जाए तो अपनी सब्जी उगे सकता हूँ कि जी क्या करूँ आज है ना इसे नवंबर दिसंबर का असन ठंडो मौसम बेगा आते तो है ना यहीं तड़ लें असन का अक दू सब्जी अलावा नथी बोती कोई सब्जी ज़्यादा यार कड़म मूली वगैरह बोती बाकी सब्जी असन का नथी बोती ते जै वो नहीं पॉली हाउस आओ तो असमा कुने की जो टेम्परेचर है तारा जो टेम्परेचर असन लोड़े सब्जर ले तो पॉली हाउस में तन में लिगा ते तो तस टेम्परेचर की वजह से कोई भी सब्जी जाए से किसान आराम से उगे ही सड़ता है ना ते तस्सी भी कुम बोते कि 12 महीने से किसान ला जन तना सब्जी उगातन ते मार्केट में पजातन छेल अपनो
0: फायदों
1: एरा
0: को
1: फायदो
0: मातन जी
1: कमातन ते
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: असन भी आग ताजी सब्जी मिल चे
0: जी
1: ना
0: जी
1: असन भी
0: बिल्कुल
1: दूर कोई सब्जी वगैरह जाए ता ना आनी पे असन भी आराम से जाए सब्जी मिलेगा चे साथ साथ ही यार ज्यादा उपज असमा ता ना कड़ी सकतन है ना ते तस्मा कुने की शे किसान ला जन सिर्फ अस कोई अपने शाड़ शुकाड़न में सब्जी लाता तो तस्मा असन मौसम रो थोड़ा ध्यान रखना पेते है ना ज्यादा धूप है या ज्यादा बारिश है कद कद कुन बोलते कि आजकल जेर खास कर आजकल यार जना बारिश है चंद ऐसा है तुम कितन मा कोने की आन भी पेचे है ना आन जहना बारिश है जहना आ सीजन से आजकल थल वगैरह देते हैं तो निकी निकी जन थल लग चे अगर तस्पुर बैंद रहा आन भी सड़ चे तस कोने की ता खराब बेगा चे मेरा लाल रंग बोन शुर बेगा
0: जी
1: ते पाली हाउस में जना थल भी देते हैं तन कोई नुकसान ना बोए किसी की तन आन बजनी नहीं बड़े जोरी बारिश है तभी तन पर बजनी नहीं
0: बिल्कुल
1: है ना
0: बिल्कुल
1: तो तन सिर्फ कौन बोते कि तस्मा जन भी असलामिल तक खराब नहीं बोनू तसेरी पैदावार जाए तो चेले
0: जी
1: बोनी है ना
0: बिल्कुल और दुयों फायदों है भी बहुत है कि भाई कीड़ों मकोड़ों भी जल्दी ना लगे
1: जी
0: यानी पाली
1: बिल्कुल
0: हो से में कीड़ों मकोड़ों बड़ो लगे हैं ना फिलहाल
1: लग गया फिलहाल
0: ठीक है
1: जी
0: ना
1: जी बिल्कुल
0: इसकी तस्कर भी बचाओ भी गाते क्योंकि कहना
1: बिल्कुल
0: जैसे बीमारी इसे फसल में एचन है ना यदि मौसमी की वजह से भी तब्दील बोल रही थी एचन ठीक है ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: ते अगर पाली हो शीशे किसान लाते हैं तो इसमें भी छेल फायदों और डिपार्टमेंट से रातों कहते हैं इस पर 50% सब्सिडी भी मिल जाए
1: बिल्कुल
0: हर एक ही काम है वो 50% सब्सिडी अगर असि कोई
1: जी
0: पावर
1: जी
0: टेलर आनो है कोई मशीनरी आनी है
1: जी
0: तो डिपार्टमेंट से रातों कहते हैं 50% सब्सिडी इस पर तन में ली सर चाहिए जब
1: जी
0: भी कारोबार असि करना है तो अस आराम इसी कह सकते असी सब्जी की गल की इसमें असं अगर खाली सब्जी से रेलोरी ने
1: जी
0: तो बेनीफिट नहीं बनो जो अस पाली हो सकते कमाई सकते
1: कमी सकता हूँ बिल्कुल जी बिल्कुल तेहरा बातचीत इसी जारी रहनी है ऐसे पर लेकिन अस अपने किसान लान भी बातचीत सुनाता हूँ ताकि तन भी ज्यादा कर ज्यादा जानकारी पुजे ते शो मकसद भी आए बोते कि अपने किसान तक जानकारी पुजानी ते आज भी असी गल की रही है ना उन्नत किसानन है डॉक्टर फियाज अहमद है ना प्रैनू रहने वाले ते एन सी बातचीत करता हूँ ते अपने किसान लान भी सुनाता हूँ लेकिन तट पहले सुनता हूँ संदेश
0: संदेश
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मेले

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

0: काम भी ते तस्करी भी असं बचाव भी गाते
1: जी
0: जोर मतलब कि गोबरेरीज या खेती ना
1: जी
0: तह खेती मानी गा छे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। हैरा आजकल ज्यादा कर ज्यादा जन खाद वगैरह इस्तेमाल कर रहा रहे तनसी कुने कि हैरा फसल तो जल्दी बन चे पर शीजा जमीन है तो सारी सेहत भी बिगड़ चे ते खाद री फसल ज्यादा खत्म तो सेहत भी बिगड़ चे
0: जी
1: है
0: ते
1: ना।
0: स्वाद है ना वो है
1: बिल्कुल जी स्वाद भी ना बोए दे तसेरी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा भी ना बोए है ना।
0: बिल्कुल
1: ते तो ले लें ऐसी कोशिश करनी कि ज्यादा कर ज्यादा जाए तो गोबरी खाद इस्तेमाल करूँ ताकि इसी जमीन भी तंदुरुस्त रहे इसी सेहत भी तंदुरुस्त रहा है ना। ते अस जना खादा या पेस्टिसाइड्स हरदम तो तन करो जाए तो बुरो असर हर किन चीज़ पर पेते ते साथ साथ यारा पॉली हाउस में असर अगर जल्दी चीज़ उगा तम कोई सी फसल जल्दी उगचे सब्जी वगैरह तो किसान लाभ भी जाए तो ज़्यादा कर ज़्यादा बनी सकता तो कोशिश लोड़े की कि असमा असन सब्सिडी भी मिल चे ते बेचर तो अस अंग्रेजी सकतम बनी सकतम तो फायदा जाए तो सही सकतम।
0: जी बिल्कुल
1: ते यारा उन्हीं गांव तोली अपने किसान लान नसीहत भी दे सकतम कि यारा इस जर मौसम जो आजकल कभी ठंड भी रही कभी गर्मी भी रही तो असि कुने कि जनी कुकड़ा वगैरह पाल रहे तनकर पोल्ट्री फार्म दन तने कोशिश करन कि तनके छेल सारी देखभाल करन ते अगर लगते कि कोई कंजी में कोई फ्लू एजी जोर हो या कोई बीमारी तो तनी वेटनरी सेंटर ज्यादा गई तो जाए तो कंसल्ट करन तन
0: जी
1: ते अपने जना चूजन तन सुरक्षित रखन सेफ रखन ते अपनो छेल जाए कारोबार था चलान ते हैरा गांव तो लियोनी मौसम मेरी भी जानकारी दे सरतम ते मौसम जाए तो काला खुशके रहनो कुंची हल्की फुल्की जाए तो बूंदाबांदी बही सकचे बाकी मौसम जाए तो खुशके रहनो ते टेम्परेचर जाए तो मैक्सिमम जाए तो 26 ते मिनिमम जाए तो 8 रहनो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे साथ ही शे प्रोग्राम वक्त भी मुकम्मल भी गाते
1: जी
0: प्रोग्राम सुनने वाले से भी सेहतन करी इजाजत मांगतम। जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

अभी आपसे बात कर रहे थे किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किसान वाणी। ये आकाशवाणी भदरवाह FM 101 MHz पर सामिन थोड़ी ही देर में ठीक 6 बजे हिंदी में खबरें और उसके फौरन बाद अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रिले का इंतजार कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी

0: आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زات ارٹھ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اخ تر اشاریہ پانچ میگاہٹسن پہ سمین شام چھ بجے تو 5 منٹ سپدے پیش غمی بائن ہند پروگرام

0: ए आकाशवाणी जम्मू में संजय खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं कुणाल श्रीवत्स। जम्मू कश्मीर सरकार रजौरी ते बारामूला जिले लेई साफ सफाई सरबंधी ढांचे गी तगड़ा बनाने गिते 72 करोड़ रुपये शा मते दियें परियोजनाएं गी मंजूरी दिती है। जम्मू कश्मीर च 2027 बरे दी मरदमशुमारी लेई आपूं अपनी गिनतरी दर्ज करने आली डिजिटल प्रक्रिया कल्ले थमां शुरू होग। बडले 6 बजे शा चालू होई जाग पोर्टल। जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला च केईं थाहरें पर छापेमारी जमात इस्लामी कन्नै सरबंधत एतराज जोग समान जब्त कीता है। ईंधन की बचत करने की प्रधानमंत्री हुंदी अपील के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें श्रीनगर च टांगे की सवारी की। रजौरी च जंगली सब्जी खाने करी एक व्यक्ति की मौत ते 7 जने अस्पताल च भर्ती। हुन खबरें की तफसील कन्नै विजय बजाज।
1: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

0: होरें केन्द्र शासित प्रदेश च गंदे पानी सरबंधी चुनौतिएं कन्नै निब्बड़ने ते साफ सफाई आले ढांचे गी तगड़ा बनाने लेई रजौरी ते बारामूला जिलें आस्तै इस्तेमाल कीते गेदे पानी दे प्रबंधन आली योजनाएं गी मंजूरी दित्ती ऐ। मुक्खमंत्री हुंदे दफ्तरै मुजब रजौरी आली परियोजना पर 34,43,00,000 रपे जिसलै के बारामूला आली परियोजना पर 37,96,00,000 रपे खर्च कीते जांगन। इनें प्रोजेक्टें दा मकसद गंदे पानी गी साइंसी ढंगै नै साफ करना, जल स्रोतें गी प्रदूषित होने शा बचाना ते इनें इलाकें च सार्वजनिक सेहत, साफ सफाई ते जीन जीने दे हालात च बेहतरी आनना ऐ। इनें परियोजनाएं दे बुनियादी पहलुएं पर लोह् पांदे होई यूईईडी मैह्कमे थमां इक अधिकारी ने दस्सेआ,
1: यूईडी ने एक डीपीआर बनाया था जो ऑनरेबल सीएम साहब ने अप्रूव करके, जिसका टोटल अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 38 करोड़। उसमें जो डीपीआर था वो इस पे फोकस था कि हमें प्रॉपरली ये सारा सीवेज पहले तो इंटरसेप्ट करना है, पकड़ना है कहीं पे, उसके बाद इसको डाइवर्ट करना है, ले जाना है एक साइट पे जहां पे हम इसको ट्रीट करते हैं, जिसे एसटीपी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हमारा एम यही है कि हम बिल्कुल भी जो भी हमारा यहाँ पे अनट्रीटेड सीवेज है वो किसी भी वाटर बॉडी में ना जाए। और जो ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ऑनरेबल सीएम साहब ने, ये एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी था।
0: बरे 2027 आली मर्दमशुमारी लेई आपूं डिजिटल तरीके राएं अपनी गिनतरी दर्ज करोआने दी प्रक्रिया कल्लै थमां जम्मू कश्मीर च शुरू होआरदी ऐ। मकामी बसनीक कल बड्डलै 6 बजे थमां चालू होआरदे मर्दमशुमारी आले अधिकारिक पोर्टल दे राएं आनलाइन ढंगै नै अपनी गिनतरी दर्ज करोआई सकदे न। इस सुविधा औंदी 31 मई तोड़ी उपलब्ध रहोग ते लोक घर बैठे दे गै अपने परोआरिक ब्यौरे आनलाइन दर्ज कराई सकदे न। सरबंधत अधिकारियें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् पूरी सक्रियता कन्नै इस प्रक्रिया च शामल होन ते सटीक जानकारी दर्ज करना यकीनी बनान। डिजिटल चरण दे मगरा पैह्ली थमां 30 जून 2026 तोड़ी माहिर इन्यूमरेटरें आसेआ घरें गी सूचीबंद करने दी प्रक्रिया गी तोड़ चाढ़ेआ जाग। इस सरबंधै च अज्ज इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई रामबन दे डिप्टी कमिशनर मोहम्मद अलियास खान होरें आखेआ,
2: होस्ट लिस्टिंग में कल सुबह 6 बजे से सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए जो है वो शुरुआत हो जाएगी। ये अप टू 31 मई सेल्फ इन्यूमरेशन जो है उसमें होस्ट की सभी लोग अपनी कर सकते हैं। उसके लिए एक लिंक, ट्यूटोरियल और फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल से हर आदमी अपने घर के मतलब अराउंड 33 क्वेश्चन है उसके बारे में फ्लो चार्ट होगा, तो उसमें वो अपनी जो है डिटेल्स उसमें भरेगा। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने उसमें गलती लगने के चांसेस कम होंगे, हर बंदा अपने घर के मतलब
0: जम्मू कश्मीर पुलसै बंदश आले संगठन जमाते इस्लामी खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियें दी रोकथाम सरबंधी कानून UAPA तहत दर्ज इक मामले दे सरबंधै च अज्ज बारामूला जिले च केईं थाहरें पर छापे मारे न। सोशल मीडिया दी इक पोस्ट च सोपोर पुलसै दस्सेआ जे इनें छापें दौरान इस गुट कन्नै जुड़े दे साहित्य सनै केईं एतराजयोग समेयान भी बरामद कीते गे न। तोआई इक होर गैं दे तैह्त सोपोर पुलसै पाकिस्तान थमां गतिविधियां चला'रदे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी नेटवर्क कन्नै जुड़े दे इक भगौड़े आतंकवादी दी अचल संपत्ति गी कल अटैच करी दित्ता। एह् आतंकी थेहारें दी सिखलाई लैने आस्तै बन्ना टप्पियै पाकिस्तान बक्खी चली गेदा ऐ ते केइयें ब'रें शा कानूनी कार्रवाई शा बचदा आवा'रदा ऐ। 8 महीने दे लम्मे इंतजार दे बाद आखिरकार हुन जम्मू ते पठानकोट बश्कार रेल दी आओजाई बिजन कुसै रुकावट दे भी शुरू होई जाग, की जे रेलवे ने रावी दरिया आले पुल नंबर 17 दी मरम्मती दा कम्म रिकार्ड समें दे अंदर सबूरा करी लैता ऐ। रेलवे ने दावा बन्नेआ ऐ जे एह्दे नै हुन खित्ते च सब्बै बड्डे पुल पूरी चाली चालू होई गे न। इस गैं कन्नै जम्मू खित्ते च रेल संपर्क ते समें दी पाबंदी च बड़ा मता सुधार होने दी मेद ऐ। ध्यानजोग ऐ जे पिछले बरे रावी दरिया च जबरदस्त हाड़ आने करी 26 अगस्त 2025 दी राती रावी दरिया पर पुल नंबर 17 दे इक थम्म गी किश नुकसान पुज्जा हा, जिस करी लखनपुर ते माधोपुर बश्कार रेल ट्रैक गी अद्धे दुब्बे तौरै पर बंद कर दित्ता गया हा। एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे हो। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै कुणाल श्रीवत्स।
3: किफायती सफर गी बढ़ावा देने दी इक नूठी मिसाल कायम करदे होई ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें अज्ज श्रीनगर च टांगे पर सफर कीता ते प्रधानमंत्री हुंदी ऊर्जा सरबंधी चिंताएं दे चलदे बचत ते ईंधन दे संरक्षण दे आह्वान पर ईए ने इक नोखी प्रतिक्रिया दित्ती। उनें नागरिकें गी ईंधन दी खपत गी घट्ट करने लेई पर्यावरण दे अनुकूल विकल्प अपनाने लेई भी प्रोत्साहित कीता। इस पहलकदमी बारे बोलदे होई मंत्री होरें आखिया जे टांगा विरासत ते स्थिरता गी बढ़ावा देने दे कन्नो कन्नी मोटर गड्डियें दा इक व्यवहारिक विकल्प भी उपलब्ध करवांदा है। उन्हें वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संबंधी बद्दी चिंताएं दे चलदे टांगे गी परतियै जीवंत करने ते इलैक्ट्रिक गड्डियें दे विकल्पें गी अपनाने दी भी वकालत कीती। इक जिम्मेदार जीवन जीने दी दिशा दे रूप च इस गैंग गी व्यापक सराहना की जा रही है। अपने सफर के मगरा मीडिया कर्मियों कन्ने गलबात करते हुए मंत्री सतीश शर्मा होरें आख्या
4: सेफ पेट्रोल ये लगता है सबसे अच्छा जरिया है ऑस्टेरिटी मेजर्स का। गाड़ी में ना जाकर जाया जाए तब तो इस मुहिम का पालन करना चाहिए।
5: टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा मैसेज था 5-10 किलोमीटर के सफर में, दैट शर्म किसी चीज की नहीं। तो ये चीजें क्यों करनी है, क्योंकि जो दिल्ली का फरमान है उसे पूरा करना है, क्योंकि इस देश का अभिन्न अंग है। हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें।
3: रजौरी दे कोटरंका सब डिवीजन च जंगली सब्जी खाने दे मगरा संदिग्ध फूड पॉइजनिंग दे चलदे एक आदमी दी मौत होई गई है ते किश बच्चे सने 7 होर लोकें गी अस्पताल च भर्ती करवाया गया है। साढ़े जिला संवाददाता ने जानकारी दित्ती है जे इस घटना च मोहरा ग्रां दे दऊं परिवारें दे सदस्यें दी तबीयत बिगड़ी गई ही। इन्हें शुक्रवारें दोपहरी एह सब्जी खाधी ही। संझा लेई तगर सबने 8 लोकें च इस बीमारी दे लक्षण दिखने गी लब्बे ते उनेंगी पहले सामुदायिक सेहत केंद्र कंडी च भर्ती करवाया गया ते फी उनेंगी सरकारी मैडिकल कॉलेज रजौरी रैफर किया गया। 58 बरें दे एक व्यक्ति मोहम्मद हुसैन की इलाज दौरान मौत होई गई, जिसले कि होरने की मैडिकल दिखभाल चला रही है। अधिकारी मामले की जांच शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार कन्ने गलबात करते हुए GMC रजौरी दे प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया होरें आख्या
6: 8 पेशेंट आए, उनमें से जो एक पेशेंट था वो क्रिटिकल इल आया, ऑलमोस्ट रिवाइव करने की कोशिश की हमने, लेकिन रिवाइव नहीं हो पाया, वो एक्सट्रीमली शॉक में था। लेकिन जो बाकी 7 पेशेंट है हमारे डॉक्टर्स ने एक्सटेंसिव मेहनत किया, वो 7 के साथ हमने रिवाइव कर लिए। कम्युनिटी मेडिसिन की टीम जा रही है, हम वहाँ पानी की सैंपलिंग लेंगे, हम खाने की सैंपलिंग लेंगे, हम लोगों से बात भी करेंगे, तो हम जा रहे हैं अभी, हम कोई टाइम लूज नहीं करेंगे।
3: उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें अज जम्मू दे चक भलवाल च गवर्नमेंट कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दा दौरा लाया ते उत्थे चलारदे विकास कम्में ते संस्थागत सुविधाएं दा मुआयना कीता। दौरे दौरान उन्हें मियारी ढांचा परियोजनाएं गी समय सिर सबूरा करने ते विद्यार्थियों आस्ते एक मजबूत शैक्षणिक माहौल तैयार करने दे महत्व पर जोर पाया। उप मुख्यमंत्री होरें परिसर ते बख-बख कम्में दी प्रगति दा भी जायजा लैता ते पढ़ाई सरबंधी स्हूलतें गी बधाने लई ईलें गी बढ़ावा देने आस्ते आख्या। इस दौरे कन्नै सरकार आसेआ शिक्षा संस्थानें च सुधार आनने ते इस गल्लै गी यकीनी बनाना हा जे विद्यार्थियें गी समूलचे इलाके च आधुनिक ते शैल चाली कन्नै लैस शिक्षा परिसरें तगर पुज्ज हासल होए। विश्व डेंगू ध्याड़े दे मौके पर सेहत विभाग ने पुंछ दे राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल च एक जागरूकता कार्यक्रम दा आयोजन कीता तां जे लोकें गी डेंगू दी रोकथाम ते नियंत्रण बारे जागरूक बनाया जाए सके। मेडिकल माहिरें डेंगू फैलाने आले मच्छरें गी फैलने थमां रोकने लई साफ सफाई, रुके दे पानी थमां बचने ते समें सिर इलाज दे महत्व पर जोर दित्ता। डाक्टरें, नीम मेडिकल स्टाफ, अस्पताल दे अधिकारियें ते सरकारी ANMT स्कूल दे विद्यार्थियें इस कार्यक्रम च सक्रियता कन्ने हिस्सा लैता ते सामुदायिक जतने दा आह्वान कीता। इस कार्यक्रम दा समापन सोए ते बरसांती दी रुत्ते दौरान जिले च डेंगू दे प्रकोप गी रोकने आस्ते सार्वजनिक सेहत दिक्खभाल लई बेहतर तैयारियें दी लोड़ पर जोर पांदे होई होआ। जिला अस्पताल पुंछ दे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शफी चौहान होरें आकाशवाणी समाचार कन्ने गलबात करदे होई आख्या
7: कि हमने आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर हमने तमाम अपने हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी जो हमारे कम जो शहरी हैं उनको भी हमने बुला के किया है। तो इस दिन का हमें जो है ऑर्गेनाइज करके जो है इसको सेलिब्रेट करने का हमारा मकसद है कि हम अपने समाज को, तमाम सुनने वालों को ये जानकारी दें कि डेंगू जो है ये खतरनाक इन्फेक्शन होती है और ये गर्मियों के मौसम में जो है ज्यादातर जो है होती है।
0: अखीर च खास खबरें एक बारी पढ़ती है। जम्मू कश्मीर सरकारै रजौरी ते बारामूला जिलें लेई साफ सफाई सरबंधी ढांचे गी तगड़ा बनाने गितै 72 करोड़ रपें शा मते दियें परियोजनाएं गी मंजूरी दित्ती है। जम्मू कश्मीर च 2027 बरे दी मर्दमशुमारी लेई आपूं अपनी गिनतरी दर्ज करने आली डिजिटल प्रक्रिया कल्लै थमां शुरू होग। बडलै 6 बजे शा चालू होई जाग पोर्टल। जम्मू कश्मीर पुलसै बारामूला च केईं थाहरें पर छापे मारियै जमाते इस्लामी कन्नै सरबंधत एतराजयोग समेयान जब्त कीता ते ईंधन दी बचत करने दी प्रधानमंत्री हुंदी अपील दे बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें श्रीनगर च टांगे दी सवारी कीती। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: आओ करचै गल गुआंढियें दी। पाकिस्तान सरकार दियें हर चाली दियें कोशिशें जुल्में ज्यादतियें ते अत्याचारें दे

0: बावजूद भी बलूचिस्तान च पाकिस्तान सरकार दे खलाफ जारी जबरदस्त रो रोसा थमोने दा नां नेईं लै करदा। पूरे बलूचिस्तान प्रांतै च लगभग हर रोज पाकिस्तानी हुक्मरानें खलाफ विरोध प्रदर्शन होना इक आम गल्ल बनी रेही गेदी ऐ। अपने अधिकारें लेई बलूचिस्तान दे लोक पिछले केइयें ब'रें थमां संघर्ष करदे आवा'रदे न। अजें कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान दे लोकें दी आवाज गी दबाने लेई हर चाल्ली दे हथकंडे अपना करदी ऐ ते लोकें पर ऐसे ऐसे जुल्म ज्यादतियां करा'रदी ऐ जिंदी दुई मसाल कुदरै होर दिक्खने गी नेईं लभदी। शायद गै कोई ऐसा दिन खाली लंघदा होग जदूं पाकिस्तानी फौज दे जुल्में दी कोई कलेजा कंबाई देने आह्ली क्हानी सुनने गी नेईं लभदी। बलूचिस्तान मनुक्खी अधिकारें दी खलाफवर्जी दा खाड़ा बनी चुके दा ऐ। जंदी 13 मई गी पाकिस्तानी फौज ने सूबे दे बरखान जिले दे नौशाम इलाके च 7 बलूची नौजवानें दी हत्या करी दित्ती। एह् घटना उसलै पेश आई जिसलै बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA दे सदस्य इक बैठक करा करदे हे। बलूची लड़ाकें फौज दे इस हमले दा बड़ी तगड़ियाई कन्नै मुकाबला कीता जेह्दे च पाकिस्तानी फौज दे 5 सैनिक भी मारे गे जिंदे च इक मेजर भी शामल हा। नेपाल दी समाचार एजेंसी नेपाल न्यूज़ मुजब BLA ते पाकिस्तानी फौज बश्कार मई म्हीने दा एह् सब्भनें शा बड्डा टाकरा हा। एह्दे शा पैह्ले फरवरी ते मार्च म्हीने बी इस चाल्ली दी कारवाई च पाकिस्तानी फौज गी भारी नुकसान झलना पेआ। तोआई 2026 च अजें तोड़ी पाकिस्तानी फौज दे हत्था घट्टो घट्ट 50 बलूची मारे जाई चुके दे न, जिंदे च ज्यादातर ओह् लोक शामल न जेह्ड़े ना ते कुसै हिंसक कारवाई च शामल रेह् ते ना गै उंदे कश कोई थेहार हा। मारे गेदे इनें लोकें च बजुर्ग ते हौली उमरी दे नौजवान भी शामल हे। मनुक्खी अधिकारें दी रक्षा लेई कम्म करने आले कारकुन भी पाकिस्तानी फौज दे शिकार बनी चुके दे न। इत्थै एह् दस्सना बड़ा जरूरी ऐ जे बलूचिस्तान दे लोकें दी आवाज दबाने लेई पाकिस्तान सरकार ने अपनी फौज गी खुल्ली छूट दित्ती दी ऐ ते लोकें पर अन्यवाह जुल्म ज्यादती करने गी लेइयै कोई जवाबदेही नेईं। इस्सै करियै फौज उत्थें जुल्मे अत्याचारें दी हर हद पार करा करदी ऐ। इस्सै म्हीने दे दुए हफ्ते ग्वादर यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल रजाक साबिर ते प्रो वाइस चांसलर सैयद मंसूर अहमद समेत 5 लोग उसलै लापता होई गे जिसलै ओह् ग्वादर थमां क्वेटा जा'रदे हे। जिस थाह्रा पर यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर तगर सुरक्षित नेईं हैन उत्थूं दे हालात दा अंदाजा कोई भी लाई सकदा ऐ। इस घटना दे अगले दिन 14 मई गी बलूचिस्तान पोस्ट ने खबर दित्ती जे 3 बलूच नौजवानें गी अगवा कर लैता गेआ ऐ जिंदे च इक डाक्टर भी ऐ। अजें तोड़ी इनें त्रौनें दा भी कोई अता पता नेईं। BBC दी इक रिपोर्ट मुताबक अजें तोड़ी 10,000 दे करीब बलूची लापता होई चुके दे न जिंदे बारे कोई खबर सूह या जानकारी नेईं ऐ ते एह्दा सरासर शक पाकिस्तानी फौज पर जंदा ऐ जिसी पाकिस्तानी सरकार ने बलूचियें दे संघर्ष गी दबाने लेई खुल्ली छूट देई रखी दी ऐ। बलूचिस्तान दे लोकें दी हालत पाकिस्तान दे कुसै भी होर सूबे दे लोकें कोला मती बदतर ते मती माड़ी ऐ। इनें लोकें गी आम ते जरूरी बुनियादी सुविधां तगर मुयसर नेईं न। लोकें दा आरोप ऐ जे उंदा प्रांत कुदरती वसीलें कन्नै लदोई फतोई दा ऐ। सारे वसीलें दा लाह पूरे पाकिस्तान गी थ्होंदा ऐ छड़ा इस प्रांत गी छुड़िए जेड़ा अपने संसाधनें गी देआ करदा ऐ। कुदरती गैस केईं चाली दे खनिज ते चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा होने दे बावजूद भी लोक गरीबी दी मार झल्ला करदे न ते बुनियादी सेवाएं ते स्हूलतें गी तरसा करदे न। केईं बलूच लीडरें दा मन्नना ऐ जे 1948 च पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कीता हा ते अज्ज एह् लोक अपनी पंछान लेई संघर्ष करा करदे न। किन्नी मंदभागें आली गल्ल ऐ जे अपने कोला क्या दूर दूर दे मुल्खें च मनुक्खी अधिकारें दी खलाफवर्जी दियें घटनाएं पर पाकिस्तान छाती पिट्टी पिट्टियै करलद मचांदा ऐ पर आपूं अपने गै लोकें कन्नै कनेहा बर्ताव करा करदा ऐ एह्दा उसी कोई ख्याल नहीं। गल गुआंढियें दी च बस इन्ना गै। कल इक होर नमें विशे कन्नै फ्ही मिलगे। जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समीन शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए फिल्मी मौसिकी। आगाज में आइए सुनते हैं इतिहास फिल्म से नगमा। नगमा निगार हैं समीर, मौसिकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन, और इस नगमे को गाया है अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन ने।

समीना पेश है जान फिल्म से नगमा। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, मौसीकार हैं आनंद मिलन, और इस नगमे को गाया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने।

सामीन प्रोग्राम के आखिर में समाप्त कीजिए गदर 2 फिल्म से नगमा। आवाजें हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की।

सामिन आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे। ये आकाशवाणी बदरवा है FM 101 MHz पर। थोड़ी देर में ठीक 7 बजे हालात व वाकात पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, उर्दू में खबरें 7:40 पर और रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। सामिन रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: प्रोग्राम भोजन ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, पहलगाम में सड़क हादसा, 2 सैया अजा, 6 जख्मी, मोड़ा राजौरी में जंगली सब्जी खाने के बायस 1 शख्स की मौत, 7 अलील, गुलमर्ग में आज से 7 रोजा सफाई मुहिम शुरू, जल्दी सियाहती मकाम पर पॉलीथीन के इस्तेमाल पर लगाई जाएगी पाबंदी, सेंसस 2027 के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल, मुर्दमशुमारी का अमल 2 हिस्सों में किया जाएगा मुकम्मल। और भी मौजूद थे आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
5: होली का ना अलग ही मजा है, लोरी ना मिठाई खाओ।
6: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
7: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
8: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी,
8: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जाँच

0: कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
1: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
2: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
4: पर क्या कर सकते हैं?
3: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
5: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
6: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 MHz के अलावा आकाशवाणी को पढ़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन बरेसगीर में गैर यकीनी सूरत हाल और अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ हालिया जंग के बाद से पूरी दुनिया की मईशत पर काफी बुरे असरात पड़ चुके हैं। तेल और गैस की कमी के बायस कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा हुआ है, जबकि सप्लाई चेन भी पटरी से उतर चुकी है। इस दौरान गुज़श्ते दिनों वज़ीर आज़म की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वह पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए एहतियाती इकदाम उठाएं और ज़र मुबादला बचाने की कोशिश करें ताकि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जा सके। इस ऐलान के बाद से न सिर्फ मरकज बल्कि रियासती हुकूमतों की तरफ से भी बाज इकदाम किए गए हैं। इस दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज अलामती तौर घोड़ा गाड़ी में चंद किलोमीटर तक सवारी की ताकि जम्मू कश्मीर में तेल की खपत को कम करने का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। वजीर मसूद ने बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमें इस मुहिम में मरकज का साथ देने की जरूरत है। काबीना वजीर ने BJP की तरफ से वजीर आला के घर के बाहर एहतजाज करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि BJP लीडरान और वर्करों को नई दिल्ली जाकर मरकज के सामने एहतजाज करना चाहिए और फौरी तौर रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर देना चाहिए।
9: का काफिला ना ले जाकर हमने कोशिश की एक मैसेज देने की कि आपको ट्रेडिशनल चीजों पे आना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं, तो हम दुआ करेंगे, एक मैसेजिंग थी। दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीजों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा मैसेज था 5-10 किलोमीटर के सफर में, दैट शर्म किसी चीज की नहीं। ये चीजें क्यों करनी है? क्योंकि जो दिल्ली का फरमान है उसे पूरा करना है। वैसे भी हम यूटी है, नहीं करेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा, तो स्टेट होते तो थोड़े नखरे कर लेते, और चूंकि इस देश का अभिन्न अंग है और हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, देखो एक बात आपको माननी है, जियो पोलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि हर चीज का असर पड़ेगा, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिन बेवकूफों के हाथ में इस दुनिया के सबसे ताकतवर जो लोग हैं वो ट्रेड वॉर ना करके इंसानियत को तरजीह दें ताकि लोगों को फिर से अच्छा साजगार माहौल मिले। मैं उनको बोलूंगा गेट वेल सून, क्योंकि आपको 5 साल यही करना है। हमको लोगों की खिदमत करनी है, सेवा करनी है, उनको प्रोटेस्ट ही करना। उनको 60 महीने के लिए लोगों ने रिजेक्ट किया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। हम

0: अपना रिपोर्ट कार्ड 60 महीनों बाद देंगे। अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाहर करें और स्टेटहुड की डिमांड करें, जो उनसे जबरदस्ती छीना गया है, उनको एसएसपी से हवलदार बना दिया गया। आई थिंक दैट इज द राइट वे। नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। डेस्टिनेशन पे कोशिश करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इन चीजों का, ताकि उन लोगों को भी रोजगार मिले जिनको जिनकी रोजी रोटी इन चीजों से चलती है। टांगे तो अफोर्ड कर पाएंगे तो उनको टांगे पे चलना चाहिए कहीं कहीं।
1: काबीना वजीर सतीश शर्मा की श्रीनगर में जराय अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत, आपने एक इक्तिबास सुना। अब एक और मौसम। समीन इस तारीख के मुताबिक अनंतनाग के सयाती मकाम पहलगाम के आड़ू में आज एक दिल खराश सड़क हादसे में दो सयाह अजान जबकि ड्राइवर समेत कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। जराय के मुताबिक पहलगाम से आड़ू की जानिब जा रही एक तवेरा गाड़ी रास्ते में बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में अजान होने वाले सयाहों की शिनाख्त 52 भावसार और नैना बहन साकिन गुजरात के तौर हुई है। उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। हुकाम के मुताबिक जख्मियों का इलाज जारी है और उन्हें बेहतर तिबी सहूलियत के लिए दूसरे मराकज मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर रईस अहमद भी जख्मी हुआ है, जिसे मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने वाकये का नोट लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इधर राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के मोडा पंचायत में मुबैना फूड पॉइजनिंग के एक वाक्य में एक बुजुर्ग की मौत जबकि सात दीगर के शदीद बीमार होने की खबरें हैं। इत्तला के मुताबिक मोडा पंचायत से ताल्लुक रखने वाले दो खानदानों के 8 अफराद ने गुज़श्ता रोज दोपहर के खाने में जंगली सब्जी इस्तेमाल की थी, जिसके बाद शाम देर तक सभी अफराद की तबीयत खराब हुई और उनमें फूड पॉइजनिंग के अलामत जाहिर होने लगे, जबकि कई अफराद बेहोशी की हालत में चले गए। अहले खाना ने फौरी तौर पर तमाम मुतासरीन को इलाज के लिए सब डिवीजन कटरोका के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई इमदाद दी गई। ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाद डॉक्टरों ने सभी मुतासरीन को मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया। जरा के मुताबिक 60 साल मोहम्मद हुसैन की मौत हुई है, जबकि दीगर 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एक डॉक्टर ने शर्मीन से बात करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर यह फूड पॉइजनिंग का मामला मालूम पड़ता है, ताहम वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। हुकाम का कहना है कि खाने में इस्तेमाल की गई चीजों और वाकये की असल वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
2: 8 पेशेंट आए यहाँ पे, ये मोड़ा विलेज है लाकंडी में मडाल का, तो जो एक पेशेंट था वो हमारे पास बड़ी सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में आया, सीवियर शॉक में था। हमने कोशिश की रिवाइव करने की, नहीं कर पाए। 7 और मरीज थे जो बड़े सीवियरली इल थे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की जो अथक मेहनत थी, एफर्ट थे, वो 7 के 7 पेशेंट हमने रिवाइव कर लिए है और वो सभी स्टेबल है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस एपिसोड को बडाल क्राइसिस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो हमने पेशेंट के साइन और सिम्टम्स देखे हैं, अभी तक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली किया है कि इनका और बडाल क्राइसिस के पेशेंट का जो सिम्टोमेटोलॉजी होता है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इनको बडाल क्राइसिस के साथ अभी कनेक्ट ना किया जाए तो बेहतर है। ये केस अभी आइसोलेटेड फूड पॉइजनिंग केस, इन्हें आइसोलेटेड फैमिली है।
1: फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत, 7 शदीद अलील। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। पीडीएफ के सदर और साबिक काबीना वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कश्मीर में शराब पर पाबंदी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवामी जज्बात और ख्वाहिशात के मुताबिक इकदाम करना हुकूमत के अखलाक की जिम्मेदारी है। अपने एक बयान में हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि सियासी जमातों को ऐसे हसास समाजी मसलों पर सियासी फायदा उठाने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला मुआशरे की इखलाकी और सकाफती इकदार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे सियासी महाज आराय के बजाय संजीदगी और खलूस के साथ हल किया जाना चाहिए। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कश्मीर एक मुनफरद मजहबी सकाफती और समाजी शनाख्त रखता है और हुकूमत को चाहिए कि आवामी जज्बात का एहतराम करते हुए वादी में शराब पर पाबंदी आयद करने के लिए इकदाम करे। अब एक और मौजूद। सामी जम्मू कश्मीर में दी इलाकों के साथ साथ कस्बाजात को गंदगी से पाक रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर जमीनी सतह पर इस स्कीम की अमल आवरी में कई खामियां पाई जा रही हैं, जिससे इस स्कीम का बुनियादी मकसद ही फौत हो चुका है। इधर वादी में सयाती मकामात पर भी सेहत सफाई एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और यहां पर पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतलें और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों के रैपर जगह जगह नजर आते हैं और इस वजह से सयाहों को जहनी और जिस्मानी खौफ का सामना रहता है। सयाती मकामात की सफाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और आजकल इसी तरफ तवज्जो दी जा रही है। اس دوران گلمرگ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں صفائی کا خاص خیال رکھنے اور انہیں پولیتھین سے پاک رکھنے کے مقصد سے ایم ایل اے گلمرگ

0: किया जाएगा। पहला फेज जो है जिसको हम हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कहते हैं, जो 1 जून से स्टार्ट होगा एक महीने के लिए 30 जून तक, और जो दूसरा फेज है जिसको इन्यूमरेशन फेज कहते हैं वो अगले साल फरवरी में, जो कि फरवरी 2027 में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। आपके माध्यम से पूरी आवाम, जो अनंतनाग की आवाम यहां सुन रही है, आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दैट सेंसस जो है वो 1 जून से स्टार्ट होगा, और जो पहला फेज है उसका, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि दैट जो उससे पहले जो नया एक सेंसस में जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ जो हम एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस से हमने जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कल से एक्टिव होगा। दैट मीन्स 17 मई से लेके 31 मई तक ये जो है सेल्फ इन्यूमरेशन फेज जो है वो एक्टिव कल से हो जाएगा। आपके माध्यम से मुझे पूरी आवाम से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सेल्फ इन्यूमरेशन में पार्टिसिपेट करें। ये एक नया फीचर है, ये टेक्नोलॉजी, एक जो पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है sesensus.gov.in में आप जा सकते हैं और अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। जब आप इस साइट पे जाएंगे sesensus.gov.in, इसमें आपको वहां पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना एक फोन नंबर जो होगा, कोशिश करें कि दैट हेड ऑफ द फैमिली हो जो अपना फोन नंबर के साथ वो रजिस्टर करे, लेकिन कोई भी कर सकता है अपनी फैमिली में अपने फोन नंबर के साथ। और जो ही वो उसमें फोन नंबर अपने डालेगा उसको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के साथ वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा।
1: ये थे जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट। सामिंग देवर लोलाब के छान मुल्ला और गनाई मुल्ला के सार्फिन ने बिजली ट्रांसफार्मर की बार बार खराबी पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें बिजली की फरहमी में मुसलसल मुश्किल पेश आ रही हैं। मकामी सार्फिन के मुताबिक रमजान मुबारक से लेकर आज तक कई मरतबा ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली बार बार मुतासर रहती है। उनका कहना है कि मामला आला हुक्काम की नोट्स में भी लाया गया और मुतालबा किया गया कि वहां पर एक इजाफी ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए या ट्रांसफार्मर की सलाहियत बढ़ा दी जाए, मगर बेसूद। मकामी लोगों ने महकमे बिजली के आला हुक्काम से अपील की है कि आवामी मुश्किलात को नजर में रखते हुए फौरी तौर पर इजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए ताकि सार्फिन को दरपेश परेशानियों का इजाला हो सके। बुलंद पाया वली कामिल हजरत शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह का सालाना उर्स इतवार लार गांदरबल में मनाया जाएगा, जहां नमाज मगरिब से सोमवार नमाज फजर तक रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहेगा और मुख्तलिफ उलमाए इकराम बाज़ तबलीग फरमाएंगे। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कुयमानी ने उसन क्राहमा सड़क की इंतहाई खस्ता हालत पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि जनवरी 2026 में मैग्नमाइजेशन के टेंडर जारी होने के बावजूद ताहाल काम शुरू नहीं किया गया है, इसके बायस मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। एक बयान में अब्दुल कुयमानी ने कहा कि इलाके के लोग, खुसूसन मरीज, तलबा और ट्रांसपोर्टर मुतल्लिका हुकाम की मुजरमाना गफलत और खामोशी का सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत अब नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी है और आवाम के पास एहतजाज और सड़कों पर निकलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि खराब सड़क की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि आमदोरफ में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने आरएनबी के चीफ इंजीनियर से मांग की है कि इस मामले की तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़वन गणेशपुरा पहलगाम से मकामी सार्फिन पानी की कमी को लेकर काफी परेशान है और सार्फिन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महकमा जल शक्ति डिवीजन को पानी की फराहमी के लिए जरूरी हिदायत दी जाए। इस सिलसिले में मकामी बाशिंदों ने शेरबीन को बताया कि वहां महकमा जल शक्ति की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी और प्लांट की तामीर के मकसद से 4.5 करोड़ रुपए मखसूस किए गए थे, मगर ये प्लांट 4 साल का वक्त गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है और यहां काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जबकि मकामी सार्फिन पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
4: अरे ये सेवराम की दुकान बंद क्यों है?
5: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।

0: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
2: इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
5: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
4: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
5: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
6: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
7: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
8: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
7: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
8: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
7: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
8: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
7: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
8: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
7: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
8: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
7: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
9: सुनिए था हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी में, उसके बाद उर्दू में, उसके बाद तबसरा होगा।

रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा और विल्स डिकोस्ट्रा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत, गांव शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन कविता राधा नंदेव, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मेल आया है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी की जानिब से, सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, स्वरद देशमुख और प्रणाली सानवी ने मेल भेजा है कालेगांव जाफराबाद से, सनावत एमपी से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। और ये मेल आया है सुधामा नगर खंडवा से, आप है लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफी की खूबसूरत सी आवाज में ये नगमा, फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन।

दोस्तों प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। आप हैं बबलीश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। आपने किशोर कुमार की आवाज में नगमा सुना चाहा है। फिल्म का नाम है जवार पाटा। इसी गीत को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं राम देवरी से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, इंदिरा विहार दिल्ली से मेल आया है बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी की जानिब से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया ने मेल भेजा है जिला जालून उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा और पूजा परिहार ने मेल भेजा है, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू और गुड्डू, देवेंद्र, दुशीला, अनिकेत और अंकिता, आपने मेल भेजा है मानेवाड़े रोड नागपुर से, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हिरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि।

और प्रतिभा शर्मा, जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार डकसे और आपके सभी घर वाले। सुनिए अपनी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज में नगमा, फिल्म जवार बाटा से।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। जी दोस्तों, ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है सलर पहलगाम से। आप हैं पीरजादा मेराजुद्दीन, कैसरुद्दीन और निजामुद्दीन। आपने लता मंगेशकर की आवाज में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है बाजार। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, बद्रवा से पुरुषोत्तम कुमार, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। बिट्टू बाटिया ने मेल भेजा है जज्जर हरियाणा से। आपके साथ है रितु बाटिया, रजत, मंजू बाटिया और मयंक बाटिया। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला पंजाब से स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। गुन्नूर से ये मेल आया है आदिल कुमार, मोहम्मद कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली की जानिब से। गांव पीपरलोड सुरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा और आपके सभी घरवाले। मोहाली पंजाब से बबलू मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने पोस्ट कार्ड भेजा है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा का मेल हमें मौसूल हुआ है। आपके साथ है प्रकाश अरोरा, चंदन अरोरा और अंकुश अरोरा। सुनिए अपनी पसंद।

दोस्तों आप पेश है नितिन मुकेश की आवाज में नगमा। फिल्म का नाम है दरिया दिल और पसंद करने वाले दोस्त हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जाम दाड़े। राज पैलेस माओनाथ बंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा माओ से मुन्नाबाई, पिंकी स्वरणकर, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वरणकर। स्वराट राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी। और ग्रीन चौक मोरबी से कुंडन और रंजन शर्मा ने पोस्ट कार्ड भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर नितिन मुकेश की आवाज में नगमा, फिल्म दरिया दिल से।

दोस्तों, प्रोग्राम के नाम अगली और आखिरी फरमाइश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में नगमा। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू। इस गीत को सुनना चाहते हैं कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सईद मसरूर, शायना हसन, नाजिया और इब्राहिम, संबलपुर कोंकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, मेहराज जहां और गुलाम साबिर राही, वीरागाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल उमा गुप्ता और आपके मम्मी पापा, बालौदा से राधिका हगोड़िया ने मेल भेजा है, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया और मास्टर अल कबीर, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र

खटारे, बाटापारा छत्तीसगढ़ से ये मेल हमें मौसूल हुआ है सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी की जानिब से। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और बानुप्रिया, आपने मेल भेजा है किशनगंज बिहार से। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग खर्चे, वारागाम बीरवा से नई मलिक, हिमुजान, ताहिरा, रजिया, तबुरानी, मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिल्कीज जान, अशरफ डार, मंजूर डार और पीर अल्ताफ खान ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

0: दोस्तों, इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

ये आकाशवाणी बदरवाह है FM 101 MHz पर। समीन रात के ठीक 8:28 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए सराजी मौसिकी। समीन आगाज में आइए सुनते हैं जसवंत सिंह और साथियों की आवाज में लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के

0: दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में

0: शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won three bronze medals. In the women's 77-kilogram category, Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in the clean and jerk, and a total of 220 kilograms to claim three bronze medals. In the Thailand Open badminton, the Indian duo of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sei Fei and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 22-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains, calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins three bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए तीन जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के तीन तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने पांच मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है जिसमें कोविड 19 आलमी वबा मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निजाम قائم کرنے پر

0: भिजवाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिले होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी सीबीएसई सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। सीबीएसई ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिब इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और खानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरे दस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाबता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इकतसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाज करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नामनिहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की उमूमी तशरी के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अलाक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तदार आला के हुकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسی کے 3 تمغے جیتے۔ سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسی کے 3 تمغے حاصل کیے۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21، 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔
2: یہ آکاشوانی بدرواہ ہے FM 101 MHz پر۔ سامعین، رات کے ٹھیک 9:30 ہوئے ہیں۔ اب سماعت کیجیے پروگرام گانے پرانے۔ آغاز میں آئیے سنتے ہیں پارس منی فلم سے نغمہ۔ نغمہ نگار ہے اندیور، موسیقار ہے لکشمی کانت پیارے لال، اور اس نغمے کو گایا ہے محمد رفیع نے۔

समीना, ये अब सुनते हैं सुजाता फिल्म से नगमा। इस नगमे को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, मौसिकी दी है एस डी वर्मा ने और गाया है तलत महमूद ने।

समीना पेश है लव इन टोक्यो फिल्म से नगमा। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, मौसिकार है शंकर जयकिशन और इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: सामीन, आप सुन रहे हैं गाने पुराने प्रोग्राम। प्रोग्राम में आगे आइए, सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म से नगमा। गुलुकार और मौसीकार हैं हेमंत कुमार, और इस नगमे को लिखा है शकील बदायूं ने।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की नशरियात यहीं पर मुकम्मल हुआ चाहती है। कल की नशरियात में इंशाल्लाह सुबह 7:51 पर इन्हीं मीटर्स यानी FM 101 MHz पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब खैर, खुदा हाफिज़। जय।